0: लगता है, अंदर क्यों नहीं आया?
1: खा रहा हूँ ना।
0: अच्छा, नाम क्या है तेरा?
1: बबलू।
0: बबलू कौन सी क्लास में पढ़ता है तू?
1: पांचवी तक पढ़ता था, लेकिन अब छोड़ दिया।
0: क्यों?
1: माँ बहुत बीमार है ना, उठ ही नहीं सकती, मैं ही घर संभालता हूँ।
0: अच्छा एक बात बता, तू रहता कहाँ है?
1: यहाँ बिरवाटकर चौल में, 1 घंटा दूर।
0: बिरवाटकर चौल वो जुहू वाला क्या?
1: हाँ।
0: चल चल भाग, माँ इंतजार करी होगी, जा।

0: आओ, देख तेरे से कोई मिलने आया है।
1: ये बबलू है?
0: हाँ वही बबलू है।
1: अच्छा, तू बबलू है?
2: आप कौन?
1: मैं डॉक्टर हूँ, बड़ी जान पहचान है तेरी। चल तेरी माँ को देखते हैं।